0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:06।
1: Bollywood.

0: 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है। शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Breakfast. Brought to you by Papa John's New Pan Pizza. Enjoy 360 degrees cheese, loaded toppings and a crispy parmesan crust. Order now.
4: Remember the person you thought was a superhero as a kid? For Manoj, it was Pintu Bhaiya, the fearless local hero of early 2000s Patna. A story of childhood, friendship, love and home. Experience Patna ka superhero, starring Ghanshyam Lalsa, 26th September at The Junction. D for drama. Book your tickets now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: मॉर्निंग 7:23 ऑन दिस मंडे की सुबह, एंड अपेरेंटली सितंबर इज फॉरगॉटन दैट इट इज सितंबर, क्योंकि दुबई कुड हिट 43 डिग्री सेल्सियस टुडे। दैट्स व्हाट द एनसीएम इज सेइंग, एंड पार्ट्स ऑफ द यूएई मे रीच 45 टू 48 डिग्रीज सेल्सियस। इट्स 32 डिग्रीज राइट नाउ, ह्यूमिडिटी क्वाइट हाई 72% पर, हाईज ऑफ 38, लोज ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: यार चल क्या रहा है ये जापान एशियन गेम्स में? आई एम टोटली कंफ्यूज्ड।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: जिस चीज के पहले तारीफ हो रही थी उसकी अब जम के क्रिटिसिज्म हो रही है। द फैक्ट दैट यू नो देयर इज नो परमानेंट स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट के क्रूज लाइनर्स पे शिप्स में ऑन फ्लोटिंग गेम्स विलेज बनाया है वहां पर, बट द एथलीट्स व्हेन दे रीच्ड एक्चुअली जापान दे हैड टू वेट फॉर आवर्स एंड आवर्स एट द एयरपोर्ट बिकॉज यू नो कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि किसका नाम कहाँ पर है, यू नो हु इज गॉट द लिस्ट एटसेट्रा। सो यू नो थिंक ऑफ द वर्स्ट मैनेज्ड टूर दैट यू हैव एवर बीन टू, ग्रुप टूर की मैं बात कर रहा हूँ, एंड देन मल्टीप्लाई दैट बाय 100 बिकॉज यू आर एन इंटरनेशनल एथलीट हु इज गॉन फॉर द एशियन गेम्स। और वहाँ पर जो ऑन लैंड, नॉट ऑन द सी बट ऑन लैंड जो अकोमोडेशन है वो मतलब डब्बे हैं, दे एक्चुअल लिटरल यू नो डब्बे कंटेनर्स के अंदर उन्होंने पूरा विलेज बनाया हुआ है। द फैसिलिटीज आर नॉट वेरी गुड एंड द 2000 इंडियंस लिविंग इन जापान आर हैविंग टू ओपन देयर होम्स टू द एशियन गेम एथलीट्स। सो गुड ऑन देम, गुड ऑन देम। इंडियन कम्युनिटी किस दिन काम आएगी यार, इसी दिन तो काम आएगी। सो इंडियन कम्युनिटी 2000 रेजिडेंट स्ट्रॉन्ग इन नागोया, देव स्टेप्ड अप एंड देव दे आर प्रिपेयरिंग टू होस्ट द एशियन गेम्स के एथलीट्स, क्योंकि बहुत सारे अकोमोडेशन कंसर्न्स हो रहे हैं इन जापान। बट स्पोर्ट के मामले में, यानी कि एक्चुअल गेम्स के मामले में क्या हो रहा है, इंडिया बीन अश्योर्ड ऑफ अ मेडल इन वीमेंस क्रिकेट, दे बीट बांग्लादेश क्वाइट comprehensively and now they're going to be in the finals. Iske alawa 3 silver in shooting and very controversial bronze medal in the MMA. Suchika Tarial naam ki ek jo fighter hai, MMA fighter, traditional 60 kg category mein, she narrowly missed the semi-final and she was defeated by Singapore ki ek athlete and that has been challenged by the Indian contingent. So lots of drama happening in Japan. From Welcome to the Jungle, Ucha Lamba Kad, but the forever version coming up in just a while. But talking about jungle, जो corporate jungle में आप जाने की तैयारी कर रहे हैं right now. And from this corporate jungle, I heard some very new terms, terms that are new to me. I'm going to ask you कि क्या आपने ऐसा कोई term use किया? What are the terms that people are using these days to refer to their colleagues? हटके terms हैं ये. Very funny terms coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid.
1: Big 106.2.

0: हॉलीवुड। ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चाबी।

0: जितना भी आप कह लो, आई कैनॉट गेट ओवर द फैक्ट दैट दे रीनेम्ड वन टू वी वी ए ए एन.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Now you spend at least 8 to 9 hours in this place, not factoring the time that you get stuck in traffic. So ek pura microcosm, apni ek dunya chal rahi hai na, office mein, workspace mein, corporate mein, and the most creative things come out of that particular world, right? Aaj subah ki sabse creative cheez maine ye suni ki what are the names, the crazy names that you have given, yani ki corporate people have given to their co-workers who are not very good at their jobs. All right, so let me give you the list. Sabse pehle, if somebody calls you cordless, which means ki aap cordless ke tarah hain, sirf 2 ghante kaam karte ho.
2: Yeah, how creative is that? I mean,
0: it is amazing. Then there is ET. If somebody calls you ET, it's not that they think that you're alien or jadoo or extraterrestrial. They think that you always want to go home just like ET does. Then there's a seaweed. If someone calls you a seaweed, it's not a compliment. It is just that you keep floating around all day. Then sensor light. Sensor light is one of the most creative ones. Because agar koi tabhi kaam karta hai, and we all know of that one person at work, right? Jo tabhi अचानक काम करने लगता है, when somebody walks past, boss नाम का कोई बंदा उसके इर्द गिर्द जब मंडराता है तभी वो काम करता है. जस्ट लाइक अ सेंसर लाइट ओनली वर्क्स व्हेन देयर इज सम फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, राइट? एंड देन अ व्हील बैरो. इफ somebody कॉल्स यू अ व्हील बैरो, दे आर सेइंग दैट आप तभी काम करते हैं जब कोई आपको धक्का मारता है. यू ओनली वर्क व्हेन पुश्ड. लेट मी आस्क यू, या लेट्स सी इफ यू आर एबल टू फिगर दिस आउट. वन ऑफ माई फेवरेट्स, इफ somebody कॉल्स यू किटकैट एट वर्क, या इफ somebody कॉल्स यू किटकैट, किसी ने आपको कहा ए किटकैट, तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको किसी ने किटकैट कहा तो व्हाट डू दे एक्चुअली मीन इन द लेटेस्ट कॉर्पोरेट लिंगो फॉर बैड कोवर्कर्स? गिव मी अ कॉल, लेट मी नो, 800-1062 और फील फ्री टू व्हाट्सएप मी 0543091062 पर. How many of these will you actually use? Going to put up a poll question about this on our Insta as well, 106.2 Big FM.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड मॉर्निंग, 9:06। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

क्या न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को।

0: 92.2 The Beat of Bollywood. अपने बिजनेस ड्रीम को दीजिए एक नई शुरुआत अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन के साथ. अब सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस, 48 आवर्स में एक वीजा पाइए. पैकेजेस सिर्फ 4,888 दिरहम से शुरू. 100% डिजिटल प्रोसेस, मतलब ऑफिस विजिट की जरूरत नहीं. एक ही लाइसेंस में 10 बिजनेस एक्टिविटीज, साथ ही फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान्स. आज ही 0680888888 पर कॉल कीजिए या विजिट ancfz.ae.
1: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda with prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
2: Mini chances with big tickets.
3: 20 million dirham grand prize. 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
2: Plus big spin and weekly e-throws.
3: Buy now at bigticket.ae.
4: This is an 18-plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: Looking to invest in Dubai real estate? AX Premium Properties presents Dubai Property Utsav. 26 major developers all under one roof. Join us on 26 September at JW Marriott Hotel Marina, Dubai. Enjoy up to 40% off DLD waivers, 2-year investor visas, payment plans from 1,999 dirhams per month, free mortgage consultation, up to 3-year post-handover plans, and up to 50 grams of gold vouchers. One day, endless opportunities. Register now. TNC's

0: The Big Mix miss किया गया?
1: तुम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
2: हाय निहार।
3: हाय अपनी।
2: क्या काम करते हो आप?
3: तो आई वर्क विद अ फिनटेक, तो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो घर से ही काम कर रही थी।
2: अब मुझे बताओ, वर्क फ्रॉम होम वाले ट्रिप पे जाके क्या माहौल बनाएंगे?
3: अब ट्रिप पे जाएंगे तो यार जितना भड़ास है जो लोगों से नहीं मिल रहे उतनी वहाँ जाके निकाल लेंगे।
2: ओके, वी गोना प्ले जीके कॉन्टेस्ट विद यू। जर्मन नॉलेज आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है हम चेक करते हैं। व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन जर्मनी टुडे? ऑप्शंस आर पाउंड, यूरो और डॉलर्स।
3: यूरो।
2: अरे सोच तो लो।
3: यूरो।
2: मतलब वर्क फ्रॉम होम वाले इतने डेडिकेटेड है कि उनको आंसर से दिमाग में चढ़ा होता है, पता ही होता है।
3: इतना तो पता है।
2: Congratulations, that's actually the correct answer.
3: Thank you. और मैं तो उड़ने के लिए रेडी हूँ।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: It is 9:27 on the clock and let's take a look सबसे पहले at 88. सुबह से काफी ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पर, अब it is ना के मुकाबले बिल्कुल ही ना के बराबर ट्रैफिक वहां पर मिलेगा। सेफ जोन में थोड़ा बहुत ट्रैफिक हेडिंग टूवर्ड शारजाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाकी एवरीथिंग इज क्वाइट स्मूथ गोइंग फाइनली आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स दिस मॉर्निंग। E11 इज स्टिल क्वाइट बिजी एज यू गेट साउथ फ्रॉम अजमान इंडस्ट्रियल 2 एंड ऑल्सो अलनादर इंटरचेंज 1 एज यूजुअल हेडिंग साउथ गोइंग टूवर्ड्स देरा। यू विल फाइंड कंजेशन बेरूत स्ट्रीट, डमास्कस स्ट्रीट, बगदाद स्ट्रीट का ट्रैफिक इज बिल्डिंग अप। देन देयर इज 311 आफ्टर सिटी सेंटर जाइए हेडिंग साउथ ऑल द वे टू सिटी सेंटर मिर्दिफ एंड देन अ बिट ऑफ नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक फ्रॉम सिटी सेंटर मिर्दिफ एतिहाद मॉल के आसपास आपको ट्रैफिक का मिलने वाला है वहां पर। देन देयर इज 44 अलखेल रोड पर देयर इज अ 13 मिनट डिले एंड दिस गोज ऑल द वे फ्रॉम रसल खोर टिल अलकूज फोर्थ।
5: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.

0: It's 9:46 on the clock, and you know, best part, UAE mein bahut sare contests chalte rehte hain at any given point of time. Enough motivation, incentive for people to kind of convert their passion into a proper profession.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: अब कुछ दिनों में देयर गोना बी द 30x30 शुरू हो जाएगा, इन विच द एंटायर दुबई टर्न्स इनटू वन फिटनेस हब, राइट? बट एन अमेजिंग कॉन्टेस्ट दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ इज द लिटिल ट्रेडर प्रोग्राम, एंड दिस इज फॉर स्टूडेंट्स जो कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 के बीच में है. एंड इट्स अ चांस टू टर्न योर क्लासरूम आइडिया इनटू अ रियल बिजनेस प्रोजेक्ट. देखो, बातों से बात नहीं बनती है. अगर कोई अच्छा आइडिया है, इट मेक्स सेंस to convert that into a reality, right? And so the Ministry of Education has taken things into their own very capable hands, and registration is now open for the second edition of its Young Trader program. And grade 1 se lekar grade 12 ke beech mein jo bacche hain across the country, and they can take part in this wonderful program. And ye 16 September ko iski registration jo hai, that's open. And it's open till the 15th of October. So, aapke chunnu munnus, all the bachche hain, if they've got some great ideas, this is that perfect platform that they've been looking forward to. And it's available to students in both government and private schools, very importantly. And it's coordinated through individual school administration. So, idea pe ruko mat, convert that into a reality. And ye sari jo opportunities, sari jo cheezein aapko chahiye, infrastructure, ye sab kuch aapko available hoga to convert your ideas, I'm talking about the students, into viable and sustainable project. And aim kya hai? क्यों ये इंट्रोड्यूस किया गया है? ताकि जो यंग लर्नर्स हैं फ्रॉम अ वेरी यंग एज, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इज वेरी लैकिंग व्हेन आई वाज इन स्कूल, के एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, मनी मैटर्स, ये सब कुछ जो है इट्स इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ वेरी अर्ली स्टेज. मैथ, साइंस, स्टीम के अलावा देयर शुड बी यू नो कॉमर्स एज वेल, दैट इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज. एंड स्टूडेंट्स को एक मौका मिलता है अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स फॉर अ चांस टू एक्सप्लोर हाउ आइडियाज can be transformed into real world opportunities. So yaad rahe, the Young Trader, Little Trader program has started for students grade 1 to grade 12, and registrations are open till the 15th of October. Kya accent bol raha hai? October. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 10:08।
1: बॉलीवुड।

0: tickets.
1: 20 million dirham grand prize. 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
0: Plus big spin and weekly e-draws.
1: Buy now at bigticket.ae.
2: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
3: Listen to her every day.
4: Mugambo! Khush hua!
5: 3 things that are white in color and you can eat.
6: Kheer, dahi, doodh.
5: Very nice. Sir. मतलब किचन में जाते हो आप, बीवी की हेल्प कराते हो आप?
6: हाँ हाँ बनाता हूँ, जब जब बनाता हूँ मैं.
5: हाँ बना तो नहीं रहे हो ना मुझे फिलहाल. 3 ऐसी आपकी आदतें जो वाइफ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं.
6: Watching cricket over the phone every time.
5: ओए टाइम खत्म. 3 romantic nicknames जो आपने अपनी डार्लिंग वाइफ को दिए हैं.
6: डम्बो, जानू, शोना.
5: ओए सो क्यूट. तो करते हो क्या, मेरे शोना ने खाना खाया, मेरा शोना गुस्सा है?
6: नहीं नहीं मैं ज्यादातर डम्बो बुलाता हूँ.
5: वेरी नाइस. वो आपको क्या बुलाती
6: है? वो है नहीं, वो नाम से, वो भी ऐसे कुछ डफर बुलाती.
5: वेरी क्यूट. आई लव दीज निकनेम्स. 3 झूठ जो आप बीवी से बोलते हो दोस्तों से मिलने के लिए.
6: आज हम लोग कहीं लंच पे जा रहे हैं.
5: नहीं नहीं नहीं, टाइम खत्म हो गया. नॉट बैड बट
7: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM द बिग थ्रिल विद मानसी ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: Good morning, it's 10:23 on the clock and let's take a look sabse pehle at the capital. You'll find a bit of congestion Mafraq Industrial par and this is going north, going towards Banias. Ye to roz ki baat hai, E11 ki main baat kar raha hu. Yahan par milegi aapko 4-5 minute ki der. Chalte hain Dubai Sharjah ki aur E11 par heading south. Right after a trade center roundabout. In fact, Dubai Creek se ye traffic shuru ho jata hai. And you'll find 13-minute delay out there. So, roz ke mukable kafi zyada traffic yahan par hai. Then there's 44 Alkhel Road par Rasal Khor going towards Business Bay. You'll find a 9-minute delay. Then there's 311 E11 par roz ki tarah traffic heading south going towards Dubai from Sharjah. In case you spot something, and if it's safe to call, call me on 800-1062.
9: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
7: Big 106.2.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: झूमने के लिए रेडी हो रही, जैसे कि ये गाना आपको बता रहा था. एंड ऑफ कोर्स द फेस्टिवल जहां पर हर कोई झूमता है, दैट इज नवरात्रि. ए हालो हालो इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड दिस नवरात्रि एक्सपीरियंस द फेस्टिव सूक एग्जीबिशन. और ये हो रहा है 26th ऑफ सितंबर फ्रॉम 10 AM टू 10 PM एट द अल्मास कॉन्फ्रेंस सेंटर राइट आउटसाइड GLT मेट्रो स्टेशन. यू कैन शॉप फ्रॉम 45 प्लस एग्जिबिटर्स फीचरिंग फेस्टिव फैशन, साड़ीज, ज्वेलरी, होम डेकोर, फूड एंड सो मच मोर. किड्स एक्टिविटीज, एक्साइटिंग कॉम्पिटिशन, यहां तक कि UAE's गॉट टैलेंट सीजन 8 का ग्रैंड फिनाले भी यहां पर होगा. प्लस चांस टू विन स्टेकेशंस एंड डिनर वाउचर्स. एंट्री एंड पार्किंग एब्सोल्युटली फ्री. इज ब्रॉट यू बाय किड्स आर अस विद डिवेलिशियस ब्यूटी सलून, ज्वेलरी पार्टनर बियानी ज्वेल्स, इवेंट मेड लार्ज बाय बिग 106.2.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Papa John's. Big 106.2. That's my song.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हज़ार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: 2 या 4?
3: 4।
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: 4 या 5? 5।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपने कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song, and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते हो।
2: हाय निहार।
3: हाय अपनी।
2: क्या काम करते हो?
3: तो आई वर्क विद अ फिनटेक, तो मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, तो घर से ही काम कर रही थी।
2: अब मुझे बताओ, वर्क फ्रॉम होम वाले ट्रिप पे जाके क्या माहौल बनाएंगे?
3: अब ट्रिप पे जाएंगे तो यार जितना भड़ास है जो लोगों से नहीं मिल रहा उतनी वहाँ जाके निकाल लेंगे।
2: ओके, वी गोना प्ले जीके कॉन्टेस्ट विद यू। जर्मन नॉलेज आपकी कितनी स्ट्रांग है हम चेक करते हैं। व्हाट करेंसी इज यूज्ड इन जर्मनी टुडे? ऑप्शंस आर पाउंड, यूरो और डॉलर्स।
3: यूरो।
2: अरे सोच तो लो।
3: यूरो।
2: मतलब वर्क फ्रॉम होम वाले इतने डेडिकेटेड है कि उनको आंसर से दिमाग में चढ़ा होता है, पता ही होता है।
3: इतना तो पता है।
2: Congratulations, that's actually the correct answer.
3: Thank you. और मैं तो उड़ने के लिए रेडी हूँ।
0: Cheer your midday mood Monday to Friday 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.